विश्राम मंदिर तया तत्सनातनो तनोर्मदीश्य भक्तिरसामृत सिंधु भवतु सदायं क्रमोदायं भक्तिरसामृत सिंधु चरत परिभूत काल जाल धिया भक्त्य मकरान शीलता मुक्तीन विकान नमस्यामि भक्तिरसपस्तुशील भगवन मंगल प्रसंग अज्ञा मैया सक्रियते क्रियते सुहृदा प्रमदा एक भगवद।

तत्रादो सुष्ठु वैशिष्ट्यं मश्या कथयतु निस्फुटं लक्षणं कियति भक्ति रुत्तमाया सतानुमतं अन्नाभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मार्जनावृतं

श्रीमद रत्नागरा सिंहासन स्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देव वैस्तलिवी से जमानो स्मरामणि श्रीमद सरसरवी वंशिवा तत्ता स्थिर कश्यम विनो सनयो